0: almi har gading haggadi 33 minute me divyaraj jagadol me gadin ne baajre hendane me de program gal me vahad kala me genda mawloki digital duniya ga billionaire ga samal kan den jehen kan da tai ko bae habra kori alat tibe hona dannawal inge ta de timbe fela khiala unna libona be ko vidal be kon kal set to to banna ni bada an be fela vidal de ro visnare kon ko umur fra kon ko dinna to an be fela vidal aur man no senge be fela dimave ga linga fer bae hitam ver vahata al man hisa kal de
1: den algo me dannawalin hama me ek dimadi malun e botte helun tirikumge ek program te bakuri gendave pelin verin amille maluma thodam berun mes e fursat me de ebo te e malgo me miwagutu hama mi kan kam gawaran iskon uluwa be flaka me wahaka dakallani moldis police service ke cyber crime investigation department ke faratun sub inspector of police ibrahim shuhat saida algo me dannawali assalamu alaikum
2: ad shukriya assalamu alaikum
1: wa alaikum salam bar baajer henuna ke denge to
2: আদে
1: ফতেমে সমিহা হিন্দু বাগুতে গালগুমিন বাগুত কোলে দেবিতি শুকুর দন্নম আদে মারহাবা প্রোগ্রাম ফরাতুন গেত
2: আশকুরি
1: আগুমে মেদ বিদাক্কানি আগুমে বরা কাম্বড়ুয়া হিসাবে গ বাহকে এই ডিজিটাল দুনিয়া গ বেলেভেন সমা কন্দে জে কন্দে তালগুমিন গে বরা গিন বেলেন ভেরিং হেলুন তরি কুরুম গে কি প্রোগ্রাম তা তিবে ফলুং এক স্কুল তকা গুলি বড়া গে হাম এহিং গ ওয়া কন্দে হিম কিনে তো কোন কাহাল কান্তে তাকে তো বড় ফাহ করে বেড়ে মি কথা মি ডিজিটাল দুনিয়া গদারিং তারবিয়ত বেগে গন্নের বড় বমু গন্নের
2: আরে শুকরিয়া আর বড় নেতা হ্যাঁ ই হামা আর রাউন সওয়াল কি করে ওর আহম খাসা তো মাসলে মুই দুনিয়া বসুর মত তে আম কোড কোদিন পর মুতে পর মাসলে গি ওয়া দিরা মানে ফাহ করে বি মি গতম আহিঙ্গা বড়াল মা ডিজিটাল দুনিয়া কি বিহারু কি আনহিং পুরানা মা বেরতরে দত্ত আরমন বেরতরে মান কোরা গত কি বের tereng harmen ben nuan harmen tariye kisadu kata no noni amu jangaiye tereng harmen daring ebis belehet men netti dokalla harmen ebis parenta ko aslu ben nuan to
0: shakyo se
2: kam ni meru mo harmen ge ni manapura digital duniya ki harmen manapura ni kham ber tere gotan no ta jangaiye gotan halu sipapura ni mi gotum unnange security adi safety features al netti అది ఎవ్రెస్ కాల ప్లేన్ ఎన్నెసి నోత పేరెంట్ కంట్రోల్ ఎన్నెసి ఎక్కుదిన స్మార్ట్ ఫోన్ నోత టాబ్లెట్ పద ఇకాల డివైస్ దిన మకి ఇహ రక్కతరి కమెంట్ నో ఇదే తను మిగతు వేరే వేరే ప్రతం సమాల్కం దేం చే దేంవి డిజిటల్ కంక కుదిన్ కి బ్యాంక్ కుల్యక మనాకురం బదులు మీ హర్మన్ వర్గిన పెన్నక్క మీ వర్గిన సెంటవ మీ వాగ దక్క పేరెంట్ ఉన్న వాగ దక్కాలి వేరు కుదిన్ కి బ్యాంక్
3: డిజిటల్ లిటరసీ ಕಿ ಹಮೈಕನಿ ಅಂಗೇಂ ಬುನ ಬುನ ಬದಲು ಅರ್ಮ ದಸ್ಕುರಂದಿ ಮಿಗತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಿ ದಾಯಿಮ ಎಚ್ಚಕಂ ದಾಯಿ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಎಚ್ಚಕಂ ಅರ್ಮ ಕುದಿನ ಅರ್ಮ ದಸ್ಕು ದೇವೇಣಿ ಅರ್ಮ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟರಸಿ ಅರ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಉನ್ನ ಬೆಸ್ ಇಂದಿತ್ತು ದೆನ್ ಅದಿ ಅರ್ಮ ದರಿನ ಅರ್ಮ ಸ್ನ ದೇಂಜ್ ಸಿಮ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ತೆರೆ ಹರ್ಮಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೋ ಹೆಚ್ಚೇತ ಫಾಲೋ ಕು ಅದಾಯರು ಹರ್ಮಂಗ್ ಹೆಚ್ಚೆಸ್ ಲೈಕ್ ಉದಿ ನೋತ ಕಮೆಂಟ್ ಕೋ ನೇನ್ ಮಿಕಂ ಕುರುಮ ಕಿ ಎಸ್ ಐ ಕಿ ಯಾರ ನೋಕ ಅಬದು ಎಸ್ ಎ ಕಮೆಂಟ್ ದೇ ಫೋಟೋ ಎ ಕಿ ನೋತ ಎ ಲಿಯಾ ಬಹಾಕಿ ಹರ್ಮಂಗ್ ಸಹತು ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರು ಕಿಯನೆ ಹೇಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಹರ್ಮಂಗ್ ಫಾತು ಎಗೊತ್ತ ಫಾಲೋ ಕೊಪ್ಪಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಹಾಟಲ್ ಜಮ್ ದೆನ್ ದೇವನ್ ಕಮಕ್ಕಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಕಾನಮಿ ವರ್ಗಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೋ ಕಲ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಾಕ ಪ್ರಿಂಟ್ನಿ ಆರಮಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ ಕಾಲ ಹುಟ್ಟುಮನ್ ಎತ್ತಿ ಏಗತರೆ ತಾಶಿಕೋ ಎಕ್ಕಲ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಕುರುವ ಆಮೇಲೆ ನಪ್ಸ ಬಾರ್ ಪೋರ್ವಾ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಕೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಕ್ಕೆ ಏಯ್ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಕಾನಮಿ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಬ್ಬನ ಸಮಾಲ್ಕೊಂದಮ ಗೊತ್ತಮಗೆ ವಿಫಾರಿ ಬೋಡು ಕೊಂಚ ಮಿಯಂ ಹರೋ ಮಿಕಿಯಾನಿ ডোম স্ক্রল লেটো
0: ডোম স্ক্রল
3: ডোম স্ক্রল ইন কি বেস হুট মে নেতি বেস কাল আমে লামে নেতি উড়া কুচ্চ কু স্ক্রল পুরা করুম একে একে কন্টেন্ট
0: দাদা
3: এবা তো অ্যাপ্লিকেশন তো হ্যাঁ মি কাল তুমি এই সব পুদিং নি দুমাস নি দুমা গদি বুনা হে নফসানি গতুম নফসানি দোলে হে কম পুরান নেদে আসরং হারম হে বজি সমালুয়া মিশালে কা ফোন নো তে ট্যাবলেট কুলম পুতালম বুনা গদি বাই ফারং হে বদি মাবে তনে আরমগে দারিং নোটা নিদম বুনা গডিগা মি খালগো তো কারম পেরেন্ট তো মি বুনিম মে দারিফুল কাঙ্কলে রুলিয়া একমা দেকল হাদা নগত বানাম মি একুজাগে নারু নিদা নো তারম কে নাও সিস্টেম বার বড়ম দা কম নিশানকম মি হার উপাও গোদন তো কম হোদি সো ইজ হোদি সো আনি এম কম মি আর মে সমাল কন্দেজে come doom stage scroll in the score of din den itro balala ero gabalal ma cyber security no ta privacy go hape ni mihar hame hame kani ludan nam hing no rakka en kia kala stranger danger to en no hame kani mihar otti har me kuda kudina kuda matlo ni data no ta maulumatu ar matu gelidan ko no rakka sabe ಆರಮಂಗ ತು ಮೌಲುಮಾತ್ ವಗ ನಗಾಫಾನ್ ಕಮ ಗುಲುರಕಾಸ ಬೆ ಆರಮಂಗ ದರಿಂಗ್ ಮೆದುವೆ ಕೊಬ್ಬಸ್ ಆರಮಂಗ ಮೌಲುಮಾತ್ ಆರಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಗ ಮೌಲುಮಾತ್ ಅಮ ಮೆ ಹತಲ ಕ್ರಾಜೆಸ್ ಎಬೋರ್ ಮಿ ಕಾಲಿ ಹಾತ್ಸ ತರ ಹಿಂಗಾಸ ಮಿಸಾಲಕ ಮಿ ದರ್ಫುಲ್ ಕೊಳ ಗೇಮ್ ಎಕ್ತರೆ ಎಬೋರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾಲಿ ಸಾಕ ಮಾಲಿ ಗೊತ್ತಂ ಬೇಣ ಕೊರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎ ನಂಬರ್ ತುಂ ಹಿ ಕದ್ದೆವಿ ಪರ ಬೇರ್ ಫೈಸ ತಕ ಕಸ್ಕೆಲಿ ಸನ್ ಕಾಲಿ ಕರ್ನಂತ ಕ್ರೇಬ ದಿಮಾವೆ మీకు ఎత్తు ఉందో మీద మీ డేటా ఏం వక్కం కురం డేటా నువ్వు మౌలుమాత కలు వక్కం మీద నన్ను గొప్ప ఫిషింగ్ నకి ఒళవాలే మౌలుమాత ఫిషింగ్ మీ గొప్ప ఫిషింగ్ ఎత్తు అమ్మి లొకేషన్ ఇస్తా నువ్వు కురం సౌభ సారమంటారని నక్కి బజ్జి అది వరుగద పాస్వర్డ్ కి కోబ్యాక్ వరుగద పాస్వర్డ్ కి ఉన్న సిఫత తీసుకోబ్యాక్ మీ మీ అన్న టెక్నాలజీ ఎవర అప్డేట్ మీ ఆరు వచ్చే దెన్ అది మీకు ఇతరం ఆరు మీద ధరిన్న మీ రసుకొద్దేంచే వరం ముహిం అది ఎక్క మెంగదే ఎకమకి వర్గిన రాజ్య మధ్యం అన్నక మీ సైబర్ బులింగ్ ఉండే బులింగ్ సైబర్ బులింగ్ నేకి ఇంటర్నెట్ మెదు ఎక్కువ ఘన కురుమ అనే ఆరు హేళంతరి కురుమ తీస్ కొమ్మె ఆరు కురంటే కదా ఈ ఎక్కుదిన్నకి షికారే కన్ను ఆనక ఆరు కషోరు కురుమ ఎత్తుగా నూనె ఆము హమ్మ హెమ్ ఎక్కుదిన్నకి కీబోర్డ్ గ పాదు తిబ్బకి ఎక్కుదిన్ బోర్డు బెస్ హెమ్మి ఉన్న బస్ అని ఆవరి నువాన భయక ఎదు మొత్త ఆరు కషోరు కురంటే కమ ఏస్ దెన్ ఇంకా బల ఇతరు బల ఇన్సాని గుళంతకం ఇచ్చాలక మీ ఇన్సాని గుళం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నూనియా ముఖ్య సోషల్ మీడియా ఇతమ్మ కురియారాయగల దియస్ ఆరం కబూల్పురం దిక్కమకి నోట ఇంటర్నెట్ త్రే ఆరం దరిఫుడు స్ట్రేంజ్ అత్తకాయకొమ్మి గేమ్ కులర్ వాగ దక్కమి ఉళుమకి ఇంటర్నెట్ కంత ఇంటర్నెట్ మీద దండ బెణి సోషల్ మీడియా కితమ్మ కురియారాయగల దియస్ ఆరమే దరిం కురిమతిగా వన్ టు వన్ మిగిలిన కాంబజేషన్ మిసారక మిదన్నవని కామర్స్ దశ వస్తి పేరు ఇంటర్నెట్ ఆరమే దూకొల్లి సరక అది ఎగితురం మీ టెక్నాలజీ అూరు మాహోల్ తకి విరోమ తెరే ఉపద్ద అసలు అబ్బది ఎయి డిజిటల్ తుని తెరే అసలు దుని హర్మ అతను గెల్లిగ నుదిమగే నుదిమగే ఇదే నుదిన మత్తక ఆరమ కొమ్మ కురించే కమ హరమ పేరెంట్ మిఖాల్ మాహోల్ తకి హర్మ ధరణ దస్ కొద్ది ఇంటర్నెట్ అన్నులా హరమ వకి వగుత్తకి ఏద కురుమి అసలు ధరణ దేవే రమకి దావరండి దెన్ డిజిటల్ దునియకి విదన్నవాహెన్ హరమే ఎఫ్ఆర్ఓ మేము బాగా బెక్కాలేం చేయదాను వారు బీరు తనకి అసలు డిజిటల్ దునియకి అరమే బిరుగన్నం చేతాను ఎన్నో ఎకమకు ఎయి అరమే ఇఫ్తిరామ్ కో ఇఫ్తిరామ్ మేము లిబ్బే చేతాను వెళ్ళిన వేరే గొత్తుగా అరమే నిమ్మాయికి ఎక్కువ సౌకర్యకమా అది రక్కాత్రికమా మిదమదు గొవ పాలమే గొత్తుగా అరమే మీ ఎక్కువ దిగు ఉన్న సౌకర్యం అందుతో నమస్తే రక్కాత్రికమా ಸಿಹೋಳ ಅಳಮಿ ಚೇನೀಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಯ ಎ ದೇಸರೆ ಹರ್ಮ ಸಾಲಮಕ ವೆಜ್ ಕಮಗ ವಾ ನಮ ಹಮ ದಲಿತ ಬೇನೆ ಸಲಾಮತ್ತು ಅಸ್ತೇರಿ ಇರಾದ ಕೊರಬಿ ತೆಂಗ ಮಿ ಫಾ ಕೊಪಿ ವರ್ಗಿನ ಪೇರೆಂಟ್ ಫಾ ಕುರಾಕ ಮಿ ಎಕ್ಕೆ ಕಿ ಗೇಮ್ ತವತರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಜ್ ಅತಕ ದಿಮಾವಾ ವಾ ಸೇಂತ ಕಂತ ಮಿ ಹರ್ಮನ್ ಸಿಸಿನ್ ತ ವರ್ಗಿನ ಹಮ ಪೇರೆಂಟ್ ಮನ ಹಿಸ್ತಾ ಕೊರವಾ ಕತಕಿ ಅದೆ ಗೇಮ್ ಕುಳ ಒಂದೇನ್ ಗೇಮ್ ಕುಡಕು ದಿಮ್ಮ ಕುಳೆ ಒಂದೇನ್ ಗೇಮ್ ತ ಹಿಮನೆ ಹಮ ಗಿನ ಗೇಮ್ ತ ಕಿ ಗಿನ ಗೇಮ್ ತ ಫಾರ್ಮಾ ಕೊಪ್ಪ ಮಿ ಹೊಂದನಿ ಎ ಗೇಮ್ ತ ಕು ತೆರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಜ್ ಅತಕ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆ ವಿಗೆಂ ನೋ ಸ್ಟನ್ನ ಫರಾತ ಕ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕೆ ವಿಗೆಂ ಕುದಿನ್ನ ಎ ಗೇಮ್ ತ ಕುರಿ ಎದ್ದೆ ಕಾಲ ಗೊತ್ತಕ ಆರಮ ಹಮ ಎಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ತ ಕು ಅಲಗೊಂಡ ಹಿಯರ್ನ ವೇ ಬೇನ್ ಬೇನ್ ವಾನೆ ಹೆನ್ನೆ ಅಲಗೊಂಡ ದರಿಫಳು ಅಲಮನಂಗೆ ದರಿಯಕು ನುದನ್ನ ಪೊಡತಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ತಕ ಸೈಬರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ತಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಎಮೇರು ಮುಂಗಮ ದೂಕೊಲ್ಲೇ ವಾಹಕಶ ಎಯ್ ಆರ್ಮೆ ಉಷ್ಣಂ ಚೇಕಮ ಹಗಿಗತಕಿ ಎಯ್ಯೆ ಹಗಿಗತಕಿ ಆರ್ಮೆ ಕುದಿನ್ ಕಿದಿ ಬೇರ್ಸಿರಿ ಅನ್ನರೆ ದೂಕೊಲ್ಲೇ ನಿಗೊತ್ತ
1: ಏದೆ ಮ್ಯಾಗಣ ಗೊತ್ತೆಗ್ಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಕಂದೆ ಜೇ ಕಂತ ತಕಿದೆತ್ತು ಅದ್ವಾರ ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯ ಅಲ್ಗುಮಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ ತಿದೆ ವಿವಾಗುತ್ ಕೊಳಂಗೆತ
0: ಮಿಹುರಿಯಾಕೆ ಖಾಸ ಗೊತ್ತೆಗ ತಂಕೊಳ್ಳು ಮುರುಫ ಮಿ ಅವಳ ಮೆಂಗೆ ಕುದಿನ್ ಜುವಾಂಗ್ ಉಮರ ಅಡಾಯಂಗ್ ಕುದಿನ್ ಜುವಾಂಗ್ ಉಮರ ಅಡಾಯಂಗ್ ಅಣ್ಣರು ಇಂಗೇತೋ ಫುರಾ ಉಮರ ಅಡಾಯಣ್ಣರು ಕುದಿನ್ನ ಮಿ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಬೊಡ ಮಿ ದಿಮಾವಣ ಇಂಗೇತೋ ಎಂ ವಿಮ ಎಕುದಿನ್ ಮಿ ಕಹ ಕಂತತ್ತ ಹೊತ್ತಿರಿಯ ವಣ ನುದಿನಮಟ್ಟಕ ಕುರವೇಣ ಕಂತತ್ತಕ ಅದಿ ವದಜ್ಜೀಯ ವಿಧಾನ ಕಂತತ್ತಕ ಬೇಹೇಕೊಂತುಂ ಹಾಸುಗತ್ತಗೆ ಫಾಹಕೊಲ್ಲೆ ಉಮ್ಮೀದ ಕುರ ಇಂಗೇತೋ ತಿಬ್ಬೆ ಹೊಣತ್ತಿರಿ ಅಡೋಸಂತಿ ಬೇಫಳಂ ಹಮ್ಮಿಕಮಾದೆತ್ತಿರಿ ವರ ವಿಸ್ನಾನಕಮ ಹೆನ್ನಮೆ ಮ್ಯಾಸಮ ಲವೆ ಅಡುವಾದ ಹದ್ದೆಂ ಹೊರ ಬ್ಯಾತಕಾಣ ಕುರಿಯದ್ದಾಣ.

कुछ करो वे बेबी कौन था को मिता मिकोटरी का मी मी कौन कोड़ा इंदे मी इंदु का म्यूटी कोड़ा कुछ कुछ फुड़ रोई रोई हवा कोनी Mm.

मिहारकंग ऐस हो फिनुग अबद वेस मिफेननी कुड़ कुज्जे हम एक कुज्जे को मिफेननी वेस ओह माँ बोलेंगे कि माँ विस्ने निकलने गे

कुछ करो डोई बेबी कौन था को मिता मिकोटरी का मी कोड़ा इंदे मी इंदु का म्यूटी कोड़ा कुछ कुछ चाफ़ उड़ रोई रोई हवा

0: एहम समीरात आ एहम ए नय
1: समीरा हे समीरा
2: आरुहम
0: अल्हम्दुलिल्लाह आहारेंगे मतिन हंदाने नुनेतन उदो
2: की वेगन ती हेन तिपुने
0: कमेन नुए किहिने किने लाइफ
2: हम दुनिया के उसूल उफला हिताम
0: हम एहेन दो स्कूल कौड़ ने रहे एका जवाब ती देने मिहारु
2: मिकोल गत मिहारु
0: आ वरा फाहुम बदलवे
2: आहारे में सेता आदि मागिना दो हेनुवे
0: एहेन भी मराज्य के नीति मदो नुफेन ने
2: तिबुने नु आरो हम सेफाहुम आदि मागिना दो हेनुवे ये
0: आहारे देतिरे को मालियन न में
2: ओ एहेन दो
0: तंकोले अम्मिल्ला सवाल करंता
2: सवाल जवाब दिन मके मजबूर का में नोने ने
0: देन तीवरों सवाल करु मके बस बेन में तेनो
2: ए यार हम के कमे
0: मैं विजय कम बाबा ते मी कता आवी के कौन था गुस तियाई
2: मिउल ने जो बेंग होतन लगे इंटरव्यू का गुस फमियाई
0: एहन त एक को मिकोला बदल वीता
2: बिता के देन उलेम वाणी
0: रंगलो हियाले कोबा मे हार फारी में देन ये उलेम में दिमाग वेता
2: फारी के अबदवस हम बेस ये देन ए उले एहेम में बस देतिरे कुन फेने और हम नुंगे ककुस नुगे लेवीया
0: मासे बस नुगे ले में कुडा को दुरुवी हितंग मुदा गुआति
2: आदि से कल मोया वाक दक्कन ता
0: देन ए वाक बाबा ए आदि वाणी के बद्दल वदा गुरु पेको
2: बादा मु दिमाग में को

0: Ε, κοντά.
1: Κάλε νύχτα.
2: Καμλό, τάγκουρε, τάγκουρε, καρφίτα, καλά, φα. Βαράνιο, βαρκα, μπονι, βασάδα, νουμπά, να κατάγκουρε, γάδε, να μπαρκούν, μπονι, βασάδα. Χαρκούν, βασάδα, μπονι, κομμουνιά, χαλά, κουνιγάδα.
3: Α, σικούρι, κόβα, μα σύρκο, μυαλό, κίνεμπα.
4: Καμφούλε, νοέ, μυαλό, κέγκουλε, βεσμό, λοιπόν. Βέβαια, στάγκουρε, μπαρκούν, να την κάνω, κάνω, σκάδα, να το δεύτερο.
5: Καμούρο, βέβαια, καμακού, εμιαί.
6: हां बकुरा कौन का मकु
5: तैबे हर जही कहले बुली कोले जहाले बले एई दोनी कुदिन बडुति ददुम मच्चा महगांगले
7: मरियमबा बमता होरी वर रीचा हुदो एफ आहर बमता वर रीचा फाइव वर वर तलालम फसे माने
8: ले ले ले गांड मियाची मा हि के बडो एफ रोन रंगाला वेरेनी नरसंग हि मज्जा
9: लम फातमा ತ್ಯಾ ಮಾ ಹಿ ಕೇಬಲ ವೆಗಂತಿ ಅವಳೆನ್ನಿ ತ್ಯಾ ಮಾ ಗಿನೈರ ಅಬ್ಬಲ್ಲಾ ಫಾದೆ ದಾಶ್.

0: বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আসসালামু আলাইকুম। দুনে কালিগে মুলিঙ্গা প্রোগ্রামে টিভিম বালামু আদি হা মিয়াকি গা রেডিও গডসম গিন্দা ওয়া হুরি হা ফারাত কা মারহাবা আদনম কালিগে মি প্রোগ্রাম আকি গাতি বেফনা মি বদল কলি আহম শাফিউ মি প্রোগ্রাম কি মি এইরিগ গা বাইন লগা মি মশম ফাহ কলবে মুহি মুখং কম মচ্চা তাফসিলি আদি তাহলিলি নজর কম বালালা আলমে তাইয়ার কম গনসে হাসা প্রোগ্রামে কমেদকে প্রোগ্রাম গাস্তি বেফনা হিসাব বাতাফাত একে কি মালুমাত হিসাব কলারুগা মিয়াদুগে প্রোগ্রাম গা হিসাব কলা মাওলুকি গজাগে মশলা হল্লু কুরম বাইন লগোয়া মে গানুনু তার নুকুলদু মে মাওলুগে মচতি বেফনা হিসাবা মে প্রোগ্রাম গা ইতুরু মাওলুমাতা হিসা কলমুনানি আলুগনাকি গা ইনলিস্ট গুত কা মে মাওলুমাতা হিসা কলমট কা মে বারবনি ইব্রাহিম নাজিম নাজিম প্রোগ্রাম ওয়ারবড মারহাবা ইয়াত আরমন ওয়ারবড দক্কাল ওয়ে ওয়াহকে মে বাইন লগোয়া মে গানুনু তাকা গাওয়াত ওয়ারবড মে কা নুকুল দিফাওয়া ওয়াহকা ফালাস্তিনু মে গজা ইয়াদ কোলা ইহুদি মে হিঙ্গা মুন্দা আনিয়াভেরি গাতুলাম তার নিমমক গেন বাইন লগোয়া মে গানুনু তবনি ওয়ারবড নুকুল দিফকমা বরগিনা ফারাত কোন তাফাত হিয়ালত একে কে প্ল্যাটফর্ম তোগা এবা ফাহকুর মঙ্গেন্দে আদি হিমি জারিমাত ইহুদিন জবাবদারি কুরবেন এভস ফারাত নেকম বুনেমে রবাইন লাগুয়া মে মুলি নিজাম বসুন লাফাকম বুনেমে ম্যাগন্ড মে বুডে সবাব কি কোবাত
1: ফলস্তিন ও গাজা দে কোলা ইহুদি ইসরায়েল ফাশাগ কঙ্কম গসাবম বাইন লাগুয়া মে গান তবার বড বসুন লাগেন গস আদি জারিমাত হিঙ্গা ফারাত কাদি কোলঙ্গলে নেবেসবি ওলে নেকম গবুনে তাফাত একে কি খিয়াত মিগেন্দনি ফাল কুরেম এগতুং হামা মুড়ি বাইন লাগুয়া মি নিজাম এক্কম মিহার মিয়তি রুলিফ কমশা কিতম মে বড়তি জারি মাত কে হিঙ্গম দি একম গ্যাস গানুনি হমত মতিং একম কান্তম ফিজ কোন ওত একমা ভেগতুং এবেসবিওলে নেতুমুম একম গবার বড়তি ফাড কিন্ত আমাজবম বদে দুনিয়া গে বড়তি দাওলেত কবেস দেন মি কঙ্কম মিহিং ইংরুগা গজ্জাগ মিহিঙ্গম দা কঙ্কম গতিরেং এম মে বড় এক্ক মে গতুগ মেয়তি ওয়াকিফারাত কুন জারি মায়া নসল নতাল মুগ হরকাত কা বাইন লগু আমি গানু না খিলাফ মা আদি ইনসানিয়ত খিলাফ মিহিঙ্গা কঙ্কম মিহিঙ্গম মিদানি বর বড় দেফু দেগো দেমিঙ্গন গ সিয়াসত তকে বাইন লগু আমি নিজাম গতিরে গ কুরি দাতি কম গ বুনে বেস এব দে হিয়াল তফাল কুরে মু ওয়াকিফারাতকুম গানুন তকা খিলাফুমুং এই দে মাসলে নুং কম গ বালাফা আনে ব্যাফারাতকুম গানুন তকা খিলাফুমুং এই ওয়ারাবড় মাসলে কম গ বালাফা মিবাত গ দেমিঙ্গানু গে দেফু দেগ সিয়াসত তকে বাইনলাগুয়ামি নিজাম গ তেরেগা গেঙ্গুলে মুন্দা তিবে ওয়াকিবায়ক বেনুম বা গত কঙ্কং কুরে মুন্দানি কম গ মুনেবি গেঙ্গে বদে দেম মেয়তি মি কঙ্কম গ তেরেগা এম মে বড় এম মাসলে গুত ফাহ করে মেয়তি ফলস্তিন গজ্জা মিহাতন হিঙ্গা গোসবা কঙ্কম গ তেরেং ইনসানিয়ত খিলাফ বড় বড়তি জারি মাত হিঙ্গা গোসবা কং আদি মি কঙ্কম মেগতং হিঙ্গা মুন্দে হিঙ্গা মুন্দায়ারু গ মিহার গোসমাই কঙ্কন নুটি কুরি দায়ারু গ গজ্জা দেবন তফাত কি কি আসকারি হামলা তকা আদি দাতি কুরুম গ ফিওল তকা আমি ফদা ইতা কে কঙ্কম গ তেরেং হদ্দি হফস হাহ বুর গিনামি মিহার মারোই গেঙ্গো সবা তিবে আদি মিগ তেরে গ্যাগন ক সালি সাস কুড়কু দিন হিমেনে কমগ বুনবে তিবে মিং এবস কম মি কি এবস মা বুন মাসলে গতুগা দুনিয়ে কে ফরাতকুম মকিং হাস ক হুলং দুনিয়ে নিসবে বা ফরাতকুম বলা ফন ওয়া কমগ বেস বুনে ওয়ারা বড়ত ফাড় কিউন তং আমাজ করে এ আমাজ করে মং এ বদে এ নমস্তে মি কমগ ফাহা কলেন জি হে তং কল মি হুড়ং দুনিয়ে গাম তো সরকার তকুম নিকমা মাবড় আড়ালমে নেকমা বুনে মুনকম গিয়েস আম রইতুম রইতুম গে ফেম্বর গাম মিকমা বর বড়ং আড়ো ফ্লা হিতিজাজ কো তফাত কি গাম তো গে বুন তকা মুজাহরা তব ওয়ানি কুরিয় গেং গোসফা দেং মিকঙ্কম মিগতং গঙ্গের গা মিহার ইনসানিয়তা খিলাফ জারি মাতা গে তেরেম ফাহা কুরে গিন্দা তাঙ্কল মি খাবো তকিচ দতি কো বন্ডজ্যসা মিফাদাম বেস দতি কুরম দারো দি মিকঙ্কম তেরেং এতকে ব্যার মিহু মারো মুন্দায়ারু গা মি বেস মাবুন মাসলেকা বেগেন দুনিয়ে গে ফেমরো গা একঙ্কং নুবেলি বেকম বুনে বেসে বদে তফাত কি ফাড় কিউন তং আমাজ মুং আদি গজ্জাং ইনসান এহি দিন মটকা তফাত কি কি ফ্লোটিলা তং হদা গেন কান মগুম গজ্জাগ হিসোর নত্তাল মটকা আদি নত্তা নুলে মুন কম গি বেস বগতি গো তুন নমস ইনসান এহি ফোর কো দিন মটকা তফাত কি উলন্ত কব্বেস ইহুদি ইসরাইল হামদি এ উলন্ত গতি মিহু হাইয়ার কোং আদি বাইং উলন্ত ಫೇರಿಗಣೇ ಏಕ ವಾ ತಕೆತಿವೆಸ್ ಫೇರಿಗಣೇ ಬಿಫದ ಅಂಕಂಕಂ ಕೊರ ಮುಂದಿಯೇರು ವೆಸ್ ಮೀ ಹಾಂ ಬೇನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಗಾಣುಂತಕ ಹಿಲಾಫ್ ಎತಕೆ ಬ್ಯಾರು ಜರಿ ಮಾತಕೆ ಮೀಗಿತರೆ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾ ಕಮಗ ಮುಣವಿಗೆಂದಿಯೇರು ವೆಸ್ ಮಿಗಂ ಕಮ ಅದೇ ಕೊಳ ಯಹೂದಿ ಇಸ್ರಾಯಲ ಯಹೂದಿ ಇಸ್ರಾಯಲ ಏಳು ಎವ್ವೆಸ್ ಫಿಯೋಳೆ ಬೇನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಫೆಂಬರೆಗ್ಗ ನೇ ಕಮಗ ಖಿಯಾಲ್ ತಫಾಳ್ ಕೊರೆ ಮಸ್ ಗೊಸ್ ವಾತೀವೆ ಮೀ ವೆಸ್ ವರಬ್ಬಡು ಕಂಬಡು ಮೇ ಗೊತು ತಫಾತ್ ಏಕೀ ಫರಾತ್ ಗೆಂದೆ ಏಕಂ ಏಕ ತಫಾಹಗ ಕುರಮು ದೆ ಮಿಹಿಂ ಹುರಿ ಎತಕೆ ಬ್ಯಾರು ಕಂಕಂ ಗತೆರೇಗ ಬೇನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಮಿಹಾರ್ ಬೇನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಗಾಣು ನಿಜ ಮಿಹಾರ್ ಮಿವಣಿ ರೋಳೆಂ ಫಟಾಫ ಕಮಷಾ ಬೊಸ್ಸುನ್ ಲ್ಯಾಗೆಂ ಗೊ ಸುವಾ ಕಮಷಾ ಮಿ ಕಂಕಂ ಮಿಗತ ಮಿಹಿಂಗ ಮಿದನಿ ಮಿ ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಬುಣವೇ ಏರುಗ ತಫಾತ್ ಏಕೀಗ ಫರಾತಕುಂ ಫಾಹ ಕುರಂ ಬಗೆಂದೆ ವರ ಮುಹಿಂ ಮು ಕಂಕಂ ಏಗತುಂ ಎಕ್ಕಂತ ಮಿ ದೇಹಸ್ ಭಾವಿಸ್ವಣಾಹಾರ ತೆರೇಗ ಅಲಿಫಿದಾಲ್ ಗಾಮ ಮಜ್ಲಿಸುಂ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮೀದೆನ್ ದುಣಿಯೇಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀಫೆಂ ವರ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಿ ಅಲಿಫಿದಾಲ್ಗೆ ಕೋರ್ಟು ಬೇನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಬಡತಿ ಮಸಲತೋಗ ಹುಕುಮ್ ಇವ್ವಂಗ್ ಒನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಿ ಕೋಟಂಗ್ ಹುಷೇಳಿ ಮಸಲೆ ಮೀ ಫಲಸ್ತೀನ್ ರಯ್ಯಿತುಂಗ ಬಿಂತ ದಿಗು ಮುದ್ದತಕ ಯಹೂದಿ ದೌಲ್ತುಂಗ್ ಹಿಫಾಗೆ ಮಿ ಒನ್ನ ಓತು ಮೀ ಬೇನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಗಾಣುಂತ ಉದರುಂ ಕೊಂಕಮೆತ್ತೋ ಬಲ ಏಕಂಗ ಮಾ ಎಡ್ವೈಸರಿ ಒಪೀನಿಯನ್ ಕೆ ಮಿಮ್ನಾಫ ದರಾವು ಎಂಗ್ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಹುಷೇಳು ಮಸಲ ಎ ಮಸಲ ಬೆಲು ಮಫಂ ದೇಹ ಸಭ್ಯಸ್ವನಾಹಾರ ಜೂನ್ ಮಹಂಗ ತೆರೆಯಗ ಐ ಸಿ ಜಿಗೆ ಫರಾತು ಹುಕುಮ್ ಇವ್ವ ವಾಕಂ ಎ ಹುಕುಮ್ಗೆ ಭಯಾಂಕ ಫೈಭವೇ ಫಲಸ್ತೀನ್ ರೈತುಂಗ ಬಿಂತಂ ಹೇಗ ತೆರೆಯಗ ಹುಳಂಗ ಸೇರಿ ಅಜ್ಜ ಅದಿರು ಮತಿ ಗುದು ಸುಸಿಮೆನಿಗೆ ಮಿ ಬಿಂತ ಯಹೂದಿ ದೌಲತು ಹಿಫಾಗ ಮಿ ಒನ್ನ ಓತು ಮೀ ಬೈನ ಲಗ್ವಾಮಿ ಗಾಣುಂತ ದರು ಹಮ ಕಂಡೇಳಿಗೆ ಕೈರು ಗಾಣು ನಿಕಮ ಕಮಶ ಅದಿ ಯಹೂದಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಇವ್ವೆ ಶರತೆ ನೆತಿ ಎ ಬಿಂತಕುಂ ಫಾಬಾ ಫಲಸ್ತೀನ್ ರೈಯ್ಯತುನ್ನ ಎ ಬಿಂತಂ ಹವಾಲ್ ಕುರಂ ಜೇನ ಕಮ ವಣಿ ಐ ಸಿ ಜೇನ್ ಹುಕುಂ ಇವ್ವಾಫಾ ಅದಿ ಫಲಸ್ತೀನ್ ರೈಯ್ಯತುನ್ನ ಲಿಬುನು ಗೆಲ್ಲುಮ್ಗೆ ಬದಲ್ ದೇಂ ವೆಸ್ ವಣಿ ಎ ಹುಕುಮ್ಗ ಏಕಂ ಎಗುತ ಭಯಾಂಕ ಫಮಿ ಬನೆ ಲಗ್ವಾಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿ ಕೋಟುಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮಗ ವಾಯರುಗ ಮಿಕಂ ಕಮಗ ಮಚ್ಚವ್ವೆಸ್ ಯಹೂದಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಅಳಾಲ್ ಮೆಣ್ಣು ಬಹಟ್ಟ ಅದಿ ಮಿಕಂ ಕಂ ತಂ ಫೀಸ್ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಹುಳಂಗ ದುನಿಯೆಗೆ ಫರಾತುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕತೆ ನುಕುರಾಕಂ ವೆಸ್ ವಣಿ ಫಹಾ ಕುರೆವಿಗೆಂಗೊಸ್ವ ಅದಿ ಹಮ ಐ ಸಿ ಜೆಗೆ ಹುಕುಮ್ಗ ಭಯಾಂಕ ಫೋಯ್ ತಂಕೊಳೆ ಮೀ ದುನಿಯೆಗೆ ಎಹೆನ್ ಹಿಂಗ ಅವಮ ತಕ ಅದಿ ದೌಲ ತಕ ಸರುಕಾರ ತಕ ಗುವಾದ ವೇ ಯಹೂದಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಫಲಸ್ತೀನ್ ರೈತುಂಗೆ ಬಿಂತಂ ಹಿಫಾಗೆ ಮೀ ಒಣ್ಣ ಓತು ಮೀ ಎವ್ವೆ ಸಾಲೆಗ್ಗ ಹುದ್ದಕಮ ಎಗುತಗ ಬಲ ಅನುಗತ್ ಮಂ ಅದಿ ಏಕಂಕಂ ಎಗುತಂ ಹಿಂಗು ಮಟ್ಟಕ ಎವ್ವೆಸ್ ಗಾಮಕುಂ ಯಹೂದಿ ದೌಲತಂ ಎಬ್ಬಾರದು ನುದಿರುಮಸ್ವನಿ ಐ ಸಿ ಜೆಗೆ ಹುಕುಮ್ಗ ಆಸ್ಫ ಎಹ್ ನಮಸ್ ಅಮೆರಿಕಾಯ ಅದಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಬ್ಯಾವರಿಂ ಕಂಕಂ ಮಿಕುರಮುಂ ದಾಗುತಕ್ಕಿ ಯಹೂದಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಬೇನು ಬಾ ಹುರಿ ಹಾಕಮೆಗ ಮಚ್ಚಂ ಎಬ್ಬಾರದು ತದ್ದಿನು ಹೆಂಕಂ ಬೆಳೆ ಲಗುವಾಮಿ ಗಾಣುನಿ ಹಮತಕ ನಿಜಾಮ್ ಯೋತಿ ಮೀ ಕೊಂ ಹಿಸಾಬೆಗತ ಮುನೆ ಸುವಾಲು ಫೆದಿಗೆ ಮಿ ದನಿ ಅದಿ ದಮ್ಮಿಗೆ ಹೆಂ ತಂಕೊಳವೆಸೆ ಹೋವೇ ಹೇ ಹಮ ಐ ಸಿ ಜೆಗೆ ಹುಕುಮೆಗೆ ಅವೇ ದೇಹ ಸತರೋ ನಾಹಾರು ಫಲಸ್ತೀನ್ ರೈತು